मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कल्चर बस्टर सबको गोली मारो, दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कल्चर बस्टर सबको गोली मारो, मुक्त मिले जब दिल की बुटिया फिर सदमी पूछे लो मजा ले लो। कल की बातें कल पे छोड़ो, आज मजा ले लो भाई। घुमा रुमा घुमा रुमा घुमा रुमा गेलो।

उनके प्यारों सर पर बांधो तेरे, दुनिया तुमसे खेल रही है, तुम दुनिया से खेलो, मजा ले लो हाँ। गुम्मा रुम्मा गुम्मा रुम्मा गुम्मा रुम्मा खेलो ओ खेलो ओ खेलो ओ गुम्मा रुम्मा गुम्मा रुम्मा खेलो ओ खेलो ओ खेलो ओ कल की बातें कल पे छोड़ो आज मजा ले लो, मजा ले लो भा।

कल्लू ये है ज्ञान, ये है कल्लू ये है प्राण, तू क्यों रोता चंद्र भान, माने बेटा मेरी जान, ना हो रो रो के हलकान, तू है भारत की संतान, ले ले तू ये तीर कमान, मेरे प्यारे पहलवान, बचा ले।

मेला उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली बीवी बच्चे ठेला, अरे ठे ठेला ठे ठेला ठेला अरे ठेला अरे ठे ठेला। शादी एक बरस का मेला उसके बाद झमेला,

आटा। घर में आज नहीं है आटा, खूब चलेगा बाटा। कह गए बेटा जानी वाकर, अरे वाह जाने वाकर, वाह वाह।

ये शरीर न तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये नश्वर शरीर तो एक पिंजरा है जिसमें हंस रूपी आत्मा अनश्वर है। समय आने पर ये आत्मा रूपी हंस उड़ ही जाएगा।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोल मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

ओए ओए जवानी ले दुबी आई द फिल्म क्या कूल है हम से निकाला गया है एंड दैट इज दिल द्री यू हर्ड कनिका कपूर अंकित सिंह पत्याल एंड उपेंद्र वर्मा एंड दिस इज मुस्तफा सहित आई द फिल्म ब्लूड मनी गीत का नाम है तेरी यादों से

होठों पे नाम है तेहरा तेरा, नींदों पे रहता है पहरा तेरा, जब से बनी रे बनी तू मेरी प्रेमिका। Geweldige हंगामा सॉन्ग, toch? हंगामा सॉन्ग था।

जैक नाइट की आवाज में दोस्तों आप सभी सुन रहे थे या een prachtige song. Gezongen door een geweldige zanger met heel veel potentie. Eigenlijk twee zangers, want je hoorde ook nog Kom maar staan hoe er doorheen. Goed, Ujala Radio is full on. Aanwezig. JC Hardin, haar raad. Elk moment van de dag toch? और यहां से हम आपको ले चलते हैं अगला गीत की ओर. ये भी एक खूबसूरत सॉन्ग है, आउट द फिल्म प्रेम रतन धन पायो.

सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठती है। विनीत सिंह और अनिश्वा की आवाजों में दोस्तों, क्या खूबसूरत गाना है ये, एक सुपर हिट सॉन्ग है ये दोस्तों, आज फिल्म प्रेम रतन धन पायो। और अब सी बार हम आपको ले चलते हैं एक लोकल सॉन्ग की ओर, कसों का दौर विक्रम राम की सुन साइन फेर सी फान जीना जीना।

मिलके करे चल, एड फिल्म लव शुडा से निकाला गया है। और प्रोग्राम अभी बाकी है दोस्तों, खूबसूरत गीत हम आपको सुना देता हूं, और इस बार मिस्टर राहत फतेह अली खान की आवाज में। गीत का नाम है फिर से।

फिर किसी ये तो प्यार करने लगा है, फिर मुझे दिल बेकरार करने लगा है, ये दिल को क्या हुआ है। बड़ी खूबसूरत सॉन्ग, बेमिसाल गीत, मिस्टर राहत फतेह अली खान की आवाज में। उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये दोस्तों, अमित जयराम की तरफ से एक बार फिर नमस्कार और सलाम। हैव अ नाइस डे, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द डे। या एलग मोमेंट, वर्गेट है मोमेंट। बढ़ते हैं ये प्रोग्राम खूबसूरत गीत के साथ, और इस बार ये गीत के साथ गजब का है ये दिन, फिल्म सनम रे से निकाला गया है।

0: करो।
1: उजाला उजाला ला रहे हैं आपके वास्ते सुनवालो जातदार सनीचर 19 सितंबर को मेरफार थिएटर में, हाँ अमस्टरडम के मेरफार थिएटर में ये जबरदस्त कॉन्सर्ट होने वाला है, द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। आप लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, माइक मुकेश, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, अलका यानी, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सोनू निगम एंड नॉक फेल मेर गाने वाले के गाने आप सुनेंगे, ला रहे हैं उजाला आपके वास्ते, द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। ज्यादा 19 सितंबर टिकट गदाम, कुछ टिकट बाकी रह गए हैं, रंग 1 €20, रंग 2 €15 एंड हैप्पी एंड स्टार्स, दैट कॉस्ट योर कार्ड मार €3.50। चेक ऑफ meervaart.nl, इनलोप vanaf 7 uur Meervaart Theater में zaterdag 19 september. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel, door Shadi honen wel, zijn wel. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. 15 Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel, door Shadi honen wel. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। मोहम्मद रफी एंड लता जी फिल्म पाकीज़ा से आप सुने उजाला रेडियो है ये। उजाला रेडियो पर हर एक काम दिलाने के लिए आप तार करें दफ्तर के समय यानी कि तैदंस कंतोर उरन 020 409 0800।

और मोहम्मद रफी साहब के साथ आशा जी से आप सुने फिल्म आराधना का गीत। उजाला रेडियो है ये। कुछ मिले जुले गीत हम आपको सुना रहे हैं।

क्या देखती हो सूरत तुम्हारी। फिल्म कुर्बानी का गीत आप सुने, ये उजाला रेडियो है सुनने वालों। हमेशा आप ताड़ करे हर एक रेडियो के क्षेत्र पर काम के लिए 020-409-0807। एंड एक और गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

और उन दिनों का एक सुपर हिट गाना, फिल्म का नाम आपको याद होगा अभी ना, हम किसी से कम नहीं।

और फिल्म द ट्रेन, हाँ फिल्म द ट्रेन का गीत अभी आप सुने, और हमारे जो अच्छे सुनने वालों हैं वो सुन चुके होंगे कि हम इस घंटे का प्रोग्राम में मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ गीतों आपको सुना रहे हैं।

औसनम तेरे हो गए हम, आई मिलन की बेला, फिल्म का नाम आई मिलन की बेला। अभी हम कहे कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने हम आपको सुना रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि दो गाने हैं, ड्यूएट्स है, या तो लता जी के साथ या तो आशा जी के साथ। यू आड़ू जाला रेडियो पर सुनिए।

और उच्च है मिलन की मोहम्मद रफी के साथ लता जी को आप सुने और फिल्म का नाम मेला उजाला रेडियो है सुनने वालों हम लोगों का तार का नंबर 020 409 9807

दोस्तों, आज मैं पहली बार गजल गायकी की दुनिया में एक नई चीज़ पेश कर रहा हूँ, तज़मीन। जी हाँ, वही घुंघरू टूट गए, वही गायक टूट गए लिखने वाले शायर जनाब ख़तिल शिफाई साहब की गज़ल के शेरों पर तज़मीन करके उसको गीत का रूप दिया है जाने पहचाने शायर जनाब मुमताज़ राशिद ने। बहुत शुक्रिया।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अलमेर से लड़कन पंचू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 62 साल के आयु में त्वियन जस्तखियार और विधवा बिसुंदैया पंचू छोटू का बेटा, लड़कन प्रशांत सुनैना और दीपक पंचू के पिता, अनुष्का मॉरिस और योलंदा के ससुर, साजन यश और लक्षा के आजा, जीन का नाना, अलमेरे का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू की मृत्यु अलमेरे में हो गई है। अशोक पंचू के नाम से लोग पहचानते थे। अलमेरे से लड़कन पंचू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 62 साल के आयु में त्वियन जस्तखियार और माँ विधवा बिसुंदैया पंचू छोटू का बेटा, लड़कन प्रशांत सुनैना और दीपक के पिता, अनुष्का मॉरिस और योलंदा के ससुर, साजन यश और लक्षा के आजा, जैन का नाना, अलमेर का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू की मृत्यु अलमेर में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक अयोत्फार्ड सेंट्रम वेस्टहार्द के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में, और अर्थी के दाह क्रिया कल सुबह 10:30 बजे मोर्खन हाल्फ एल्फ किए जाएंगे वेस्टहार्द क्रेमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

0: था।
1: और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए, अम्स्टर्डम ओस्ट के रहने वाले समस्त परिवार पंचू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 62 साल की आयु में त्वेयंस्तख्यार और मां विधवा बिसुंदैया पंचू छोटू और स्वर्गीय पिता श्री राम प्रसाद पंचू के बेटा लड़कन प्रशांत दीपक और सुनैना पंचू के पिता दो पतो एक दामाद के ससुर कारला जगेसर पंचू गीता सौदागर पंचू वती दंद्राल पंचू आशा पंचू और रोसिता गयाधर पंचू के दुलारा भाई चार बहनोई के सार 11 लड़कन के मामा 7 पतो और एक दामाद के मामुआ ससुर 15 लड़कन के आजा और नाना अलमेरे का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू की मृत्यु अलमेरा में हो गई है। अशोक पंचू के नाम से लोग पहचानते थे। अम्स्टर्डम ओस्ट और बाकी नीदरलैंड से परिवार पंचू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 62 साल की आयु में त्वेयंस्तख्यार और मां विधवा बिसुंदैया पंचू छोटू और स्वर्गीय पिता श्री राम प्रसाद पंचू के बेटा लड़कन प्रशांत दीपक और सुनैना रसियावन पंचू के पिता दो पतो एक दामाद के ससुर कारला जगेसर पंचू गीता सौदागर पंचू वती दंद्राल पंचू आशा पंचू और रोसिता गयाधर पंचू के दुलारा भाई चार बहनोई के सार 11 लड़कन के मामा 7 पतो एक दामाद के ममुआ ससुर और 15 लड़कन के आजा और नाना अलमेरा का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू की मृत्यु अलमेरा में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक अर्थवर्ड सेंट्रम वेस्ट खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेख अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में और अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के सुबह 10:30 बजे हल्फ एल्फ किए जाएंगे वेस्ट खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में।

और मृत्यु समाचार आप सुनिए दन हाग जुटरमेर और पेन आकर नो दौरप के रहने वाले परिवार जगे सरपंचू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए सोमवार को 62 साल की आयु में त्वेयन जस्तखियार औत बहन श्रीमती कारला जगेसर पंचू का दुलारा भाई बहनोई श्रीमान एस जगेसर का सार लड़कन रवीन जगेसर और प्रवेश जगेसर के मामा शरिश्मा जगेसर भांगूर और शरीना जगेसर तिलक के ममुआ ससुर शनाया व्यान और शिवा जगेसर के आजा अलमेरे का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू के मृत्यु अलमेरे में हो गई है। अशोक के नाम से लोग पहचानते थे। देन हाग जुटरमेर और पेन अकरनो दौरप से परिवार जगेसर पंचू बहुत दुख के साथ सूचना को कर रहे हैं कि बीते सोमवार को 62 साल की आयु में त्वेयन जस्तखियार औत बहन श्रीमती कारला जगेसर पंचू का दुलारा भाई बहनोई श्रीमान एस जगेसर का सार रवीन जगेसर और प्रवेश जगेसर के मामा शरिश्मा जगेसर भंगूर और शरीना जगेसर तिलक के ममुआ ससुर शनाया व्यान और शिवा जगेसर के आजा अलमेर का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू की मृत्यु हो गई है अलमेर में। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक अयोत्फर सेंट्रम वेस्ट हार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के सुबह 10:30 बजे मोरखन दोंदरदख हाल्फ एल्फ किए जाएंगे वेस्ट हार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरसोरखिंग परिवार पंचू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार को आप प्रोग्राम में सुनिए। अम्स्टर्डम ज़ुइटोस मेलिंगनहॉफ से परिवार परस मुरली बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार को 87 साल के आयु में ज़ेफ़न तख्तियार औल्ट श्रीमान परस मुरली की बड़की श्रीमती खैरदा मुरली गोपाल की बहन सभी लड़कन के मौसी अलमेरा की रहने वाली श्रीमती प्रभावती गोपाल की मृत्यु अलमेरा में हो गई है। रोसा गोपाल के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अम्स्टर्डम ज़ुइटोस मेलिंगनहॉफ से परिवार परस मुरली बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार को 87 साल की आयु में ज़ेफ़न तख्तियार औल्ट श्रीमान परस मुरली की बड़की श्रीमती खैरदा मुरली गोपाल की बहन और सभी लड़कन के मौसी अलमेरा की रहने वाली श्रीमती प्रभावती गोपाल की मृत्यु अलमेरा में हो गई है। इन्हें लोग रोसा गोपाल के नाम से पहचानते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 2 बजे मोरखन दोंदरदख 2 यूर किए जाएंगे। वेस्खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर उत्फार्ड फ्रसोर्खिंग परिवार गोपाल परिवार मुरली और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

यहीं से आप सुनेंगे शोक प्रोग्राम यादें। इसमें हनुमान चालीसा हरिहरन की आवाज में आप सुनेंगे, जो कि पेश है आम्स्टरडम ओस्ट के रहने वाली माँ विधवा बिसुंदैया पंचो छोटो के तरफ से अपने स्वर्गीय बेटा स्वर्गीय श्री अशोक कुमार पंचू की याद में 62 साल की आयु में बीते हुए सोमवार इनकर मृत्यु हुए है आलमेरा में। तो माँ की तरफ से बेटा की याद में और इनकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये हनुमान चालीसा प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा लड़ेडी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉनटूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

ये था उजाला रेडियो पर बजने वाला गीत। उजाला रेडियो आप सुन सकते हैं हर एक दिन, हर एक रोज, सात दिन, 24 घंटे लगातार ऑनलाइन ऑफ या डीएबी प्लस नीदरलैंड भर में।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास और ये सदा किसकी सदा थी जो ये कहता हुआ चला गया कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊँ ये थे जनाब मुकेश साहब जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और ज़िंदा हैं।

उजाला रेडियो पूरा हॉलैंड में डीएबी प्लस पर और दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए उजाला.nl।

हम यहीं पर आपसे इस प्रोग्राम के साथ जुदा होंगे। बहुत जल्दी फिर मिलने के लिए आप ही का मन प्रिय उजाला रेडियो पर।

0: से एक आवाजों और गीतों की पहचान, सुनिए उजाला रेडियो पर।
1: This is something.

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net।

6:10 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज 16 तारीख है मेरे प्यारे सुनने वालों, बुधवार 16 तारीख सितंबर साल 2026। तो फिर एक बार आपका सेवा करने चले आए हैं लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से फिर एक बार ये प्रोग्राम पेश करेंगे। आज तीसरी और आखिरी बार सजाएंगे प्रोग्राम शैलेंद्र सिंह जी का, जिनकी आवाज बहुत खूबसूरत है, अलग सा है और बहुत सारी हिट सॉन्ग्स इन्होंने हमें दिए हैं, अभी हमारे बीच में भी है और आने वाले अक्टूबर 4 तारीख इनका जन्मदिन होंगे। एनन वर्थ शैलेंद्र सिंह जी, फिरन सी फंतखियार, 74 साल। इनकी गाने से आपका दिल आज भरपूर हम बहलाएंगे रात्रि में 9 बजे तक। नगमाएं जो पिछले 2 नगमाओं में हमने आप तक पेश नहीं किया है और बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन है। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत सारे खबरें आपको मिलेंगी। नटुल फोर्डाटिक इबराव पहुंचे, हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी को। पता नहीं आप कहां कहां सुन रहे हैं और कहां तक मेरी आवाज इस वक्त पहुंच रही है। वैसे तो इंटरनेट के जरिए पूरे आकाशवाणी में, लेकिन पता नहीं कहां कहां आपने चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। स्वागत है आप सभी का, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आरापर्स है, शुभ रात्रि आपको कहते हुए हैं। यहां हॉलैंड में तो रात होने को आए हैं और जहां आप होंगे शायद सुबह या दोपहर होंगे। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे से ना हर एक घंटे पर इश्तिहारे आप सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, मौसम का क्या हाल है और सड़क का भी। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि 7 बजे की इश्तिहारों के बाद प्रोग्राम में मृत्यु समाचार भी पुकारा जाएगा और शोक प्रोग्राम यादें भी हैं। तो क्योंकि आज फिर एक बार वक्त बहुत ही कम रहेंगे हमारी इस प्रोग्राम का, तो मैं पहला गीत पेश करूं, क्यों क्या ख्याल है? आज का ओपनिंग सिलेक्शन मेरे प्यारे सुनने वालों, इंदवर का लिखा हुआ एक नगमा है जो बप्पी लहरी की साज और संगीत पर किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह जी मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम एहसास और ये फिल्म एहसास 1979 का है। शुभ रात्रि, एंजॉय द सॉन्ग्स ऑफ शैलेंद्र सिंह।

जो ना छोटे है ना बड़े, बड़ी मुश्किल में वो परे। किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह जी का मिलन, खूबसूरत गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। इंद्रवर का लिखा हुआ और वो भी बप्पी लहड़ी की साज और संगीत पर। फिल्म का नाम मेरे प्यारे सिनोलो एहसास और ये फिल्म जो है 1979 का है। एस के पुरी ने डायरेक्ट जो किए हैं और जिसमें राकेश बेदी, शमी कपूर, शशि कपूर, सिमी गढ़वल, लीला मिश्रा, दीना पाठक, इन सभी ने ये मूवी में काम किया है। फिर एक बार तहदिल से स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे प्यारे सुनने वालों। 10 मिनट बाकी है सरे 6 बजने में। आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। मैं हूं आपका यारों का यार रतन राम दुलारे पांडे। स्टूडियो रतनराम से लाइव प्रोग्राम पेश हो रहे हैं। फिर एक बार बुधवार की रात्रि जो है तो 6 से 9 बजे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, पुराने यादें कुछ है और संगीत के साथ जो हमारी यादें जो जोड़े हुए हैं, हमेशा मिलकर हम और आप मिलकर ताजा करते हैं। तो आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं, आप सभी को फिर एक बार रतन का प्यार भरा नमस्कार और अदा परस है। मेरे प्यारे सुनोलो, आपके हर एक कामकाज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते चेक www.ujala.nl, तमाम इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगा। एक खूबसूरत रोमांटिक डुएट सॉन्ग गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ आप तक पेश करने जा रहा हूं। गुलशन बावरा जी ने लिखा और मिलकर गाएंगे नगमा शैलेंद्र सिंह जी, अब की बार कंचन के साथ, कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर। निकाल रहा हूं खूबसूरत गीत, रोमांटिक सॉन्ग 1975 का मूवी फिल्म रफू चक्कर से।

मेरे दिल ने पुकारा है और वो भी परिनाज से। गुलशन बावड़ा जी का लिखा हुआ खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, कल्याण जी आनंद जी, इसके बारे में मैं बाद में कुछ कहूंगा कल्याण जी आनंद जी के बारे में। कंचन जी और शैलेंद्र सिंह जी अपनी खूबसूरत आवाजों में खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम रफू चक्कर मेरे प्यारे सुनने वालों, 1975 का मूवी, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर नरेंद्र बेदी जी है और ऋषि कपूर, नीतू सिंह, आसरानी पेंटल, मदनपुरी, इन सभी का एक फिल्म है। आप ही का हिट स्टेशन उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों। और आज क्या मौसम था ना, बहुत बरखा, रोटरडम तो पूरे भीग गए हैं उनके साथ साथ काफी लोग भी, स्कूल जाते हुए बच्चे, काम पर जाने वाले बहुत सारे लोग भी भीग गए हैं। सुबह सुबह मैं इस सड़क पर था और मैंने देखा कि अरे बाप रे, ये क्या हो रहे हैं, बहुत बारिश, और बारिश तो रुक गई है इस वक्त यहाँ रोटरडम शहर में, तो ज़रूर रुक गए हैं। और पता नहीं बाद में और भी बारिश होंगे ज़रूर, और कल का भी लोगों ने कहा है कि बारिश भी होंगी, तो आप प्रिपेयर करना पैराप्लू या तो कुछ ना कुछ प्रबंध आप ज़रूर करें अगर आप बाहर निकलेंगे कल तो। फिर एक बार गुलशन बावड़ा जी का लिखा हुआ गीत सेवा में पेश करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों। बैक टू द फ्यूचर में शैलेंद्र सिंह जी के हिट सॉन्ग्स में एक नगमा जो निकाल रहे हैं 1985, ओकर मतलब ये है कि मैं 10 साल का चलान लगाऊंगा, फन 75 85। और एक नगमा कुछ ऐसे हैं गुलशन बावड़ा जी का लिखा हुआ जो किशोर कुमार ने भी गाए हैं मूवी में और शैलेंद्र सिंह जी ने भी गाए हैं कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ। संगीतकार मेरे प्यारे सुनालो आर डी बर्मन, राहुल बर्मन, और पेश करता हूँ गीत।

या मेरी दुआ है फूलों सी तू खिले। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, गुलशन भावरा जी का लिखा हुआ, मिलकर गीत गाए हैं शैलेंद्र सिंह जी और कविता कृष्णमूर्ति। राहुल बर्मन आर डी बर्मन की साज और संगीत पर राही बदल गए फिल्म का नाम, राही बदल गए 1985 का मूवी है। नीहतिन फैवन तख्त, रवि टंडन जी ने डायरेक्ट जो किया है, ऋषि कपूर, शबाना आजमी और क्या नाम है, कुमनी टोपडी नाम क्या नाम है, पद्मिनी कोल्हापुर, इन तीनों का एक फिल्म है। सुरेश ओबेरॉय जिसमें भी है एंड नटवरल राजेंद्रनाथ, शक्ति कपूर। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, हम एक गीत की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत खूबसूरत गीत है, फरमाइश वाला एक नगमा लगता है। और मैंने ये फिल्म कितने बार देखे हैं मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगी कि ये फिल्म किस तरह से शुरू होता है, कैसे एंड होता है, तो कहां कुछ कुछ बीच बीच में आपको बता पाएंगे। हालांकि हमने मूवी को शायद 15-20 बार देखे होंगे। खूबसूरत मूवी है, फिल्म का नाम है चाचा भतीजा। ये फिल्म का एक नगमा, एक फरमाइश वाला सॉन्ग निकाल रहा हूं। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ एक गीत है जो शैलेंद्र सिंह जी गाएंगे, और वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर। कहता है कि माँ ने कहा था ओ बेटा कभी दिल किसी का ना तोड़ो। पेश करता हूं

माँ ने कहा था, ओ बेटा कभी दिल किसी का ना तोड़ो। खूबसूरत गीत आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, शैलेंद्र सिंह जी ने गाकर सुनाए हैं, वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज और संगीत पर। 1970 नेहतिन सेवनन सेवन तक का फिल्म चाचा भतीजा से हमने नगमा को निकाले। एक फिल्म जिसका डायरेक्टर मनमोहन देसाई, धर्मेंद्र, रणधीर कपूर, हेमा मालिनी, जुगीता बाली, रहमान साहेब जी, जीवन, इंद्रानी मुखर्जी, किश्त मुखर्जी, इन सभी का एक फिल्म। और माँ का कहना हमेशा मानना चाहिए। मेरे प्यारे सुनो, मैं देखता हूँ धीरे धीरे धीरे हम तो बढ़ रहे हैं 7 बजे की ओर। और जैसे मैंने कहा, हर एक घंटे पर इश्तिहारे स्वास्थ्य बैन तो पीआर उजाला रेडियो। और अफसोस के साथ भी आज प्रोग्राम 7 बजे के इश्तिहारों के बाद उजाला रेडियो के जरिए मृत्यु समाचार, मौत के खबरें भी प्रोग्राम में रहेंगे। अच्छा नीत फिल मार तो geen leuke berichten. और उसके बाद में थोड़ा सा शो प्रोग्राम भी रहेंगे यादें। और तमाम सूचनाओं के बाद नेटवर्क नंबर ने फिर तरह एक रोमांटिक मूवी की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारी सुनो वालों। ये फिल्म का नाम है सुन मेरी लैला। और सुन मेरी लैला 1983 का एक फिल्म है, 1983। और व्हाट हैपिक स्कर्प, ओ डी, या डी इस लोग थोड़ा सा छेड़छाड़ भी है इस गीत में, इसलिए फिंतिकत लोग प्यार में छेड़छाड़ होना चाहिए। ये मुत बेचे ह्यूमर है, वो बेचे ख्रप कुन माके, बेचे मकार कुन प्लाग, तू जाने तो। महेंद्र दलवी जी का लिखा हुआ गीत है ये मेरे प्यारे सुनने वालों। नेचुरली शैलेंद्र सिंह, उनका प्रोग्राम आज तीसरी और आखिरी बार जो हम सजा रहे हैं, मिलकर गीत गाएंगे उषा मंगेशकर जी के साथ, और वो भी राम लक्ष्मण के साथ और संगीत पर ये नगमा।

तेरे बिना लैला कैसे जिएगा ये छैला। उषा मंगेशकर जी ने मिलकर गाए हैं ये नगमा शैलेंद्र सिंह जी के साथ। महेंद्र दलवी जी का लिखा हुआ ये खूबसूरत छेड़छाड़ सॉन्ग, जिसका संगीतकार राम लक्ष्मण। सुन मेरी लैला फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुन वालों, सुन मेरी लैला 1983 नेखन तींद्रियन तख्तख का फिल्म है, जिसका डायरेक्टर चंद्र बैल और राजकिरण, दीपिका, ओम शिव पुरी का एक फिल्म है। उन दिनों ये मूवी काफी पॉपुलर थे और बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत गाने ये फिल्म में भी है। एक फिल्म की ओर हम आपको ले चलेंगे जो बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन तमाम नगमाएं ये फिल्म का बहुत खूबसूरत है। और ये था एक नगमा, एक फिल्म सॉरी, जिसमें शैलेंद्र सिंह ने खुद भी काम किया है। उनका खुद ही गाया हुआ गीत उन्हीं पर पिक्चराइज किया गया है फिल्म में, और फिल्म का नाम है दो जासूस। 1975 का फिल्म है, 1975। रविंद्र जैन और हसरत जयपुरी जी ने गीत को लिखे, बहुत खूबसूरत गीत है मेरे प्यारे सुनने वालों। और रविंद्र जैन संगीतकार है, शैलेंद्र सिंह जी और लता जी मिलकर गीत गाएंगे। पेश करता हूँ सेवा में ब्यूटीफुल सॉन्ग, हमारे फेवरेट सॉन्ग में वर्ल्ड इज मोर, ये गीत जरूर से जरूर भी शामिल है। दरिया छा राजा, ओ देवा ओ देवा।

पूर्वैया ले, ले चल मुझे, तू कहाँ रे जाने कहाँ रे, गोरी गोरी या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुन वालों, ब्यूटीफुल सॉन्ग लता जी और शैलेंद्र सिंह जी का गाया हुआ, हसरत जयपुरी और रविंद्र जैन जी ने मिलकर गीत लिखा है और रविंद्र जैन के ही साज और संगीत पर दोनों ने मिलकर गीत गाए हैं। 1975 ने खतीन फैफन से तक का फिल्म दो जासूस से हमने नगमा को निकाले, नरेश कुमार ने डायरेक्ट किया है और राज कपूर जिंद्र कुमार ने काम किया है और जिन पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है फिल्म में, शैलेंद्र सिंह जी और भावना भट्ट। मेरे प्यारे सुनो, एक आखिरी गीत, इस गीत के बाद इश्तिहारे, इश्तिहारों के बाद मौत की खबरें और तमाम सूचनाओं के बाद दन बेनेकर सो रोन फाइव फोर हल्फ अखबिर तुरख लेकर ये प्रोग्राम, एंजॉय। फ्रॉम द मूवी अशांति, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत, शैलेंद्र सिंह आर डी बर्मन के साथ और संगीत।

और रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अलमेर से लड़कन पंचू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 62 साल की आयु में त्वियंज अस्तख्यार औत विधवा बिसुंदैया पंचू छोटू का बेटा, लड़कन प्रशांत सुनैना और दीपक पंचू के पिता, अनुष्का मॉरिस और योलंदा के ससुर, साजन यश और लक्षा के आजा, जीन का नाना, अलमेर का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू की मृत्यु अलमेर में हो गई है। अशोक पंचू के नाम से लोग पहचानते थे। अलमेर से लड़कन पंचू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 62 साल की आयु में त्वियंज अस्तख्यार औत माँ विधवा बिसुंदैया पंचू छोटू का बेटा, लड़कन प्रशांत सुनैना और दीपक के पिता, अनुष्का मॉरिस और योलंदा के ससुर, साजन यश और लक्षा के आजा, जैन का नाना, अलमेर का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू की मृत्यु अलमेर में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक अवतफार सेंट्रम वेस्टहार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में, और अर्थी के दाह क्रिया कल सुबह 10:30 बजे मोरखन हालफ एलफ किए जाएंगे वेस्टहार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को सुनिए। अम्स्टरडम नॉर्थ, द खोरन और बेल्जियम के रहने वाले आशा पंचू और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 62 साल की आयु में त्वेयंजस्तखियार औत बहन आशा पंचू का दुलारा भाई संतोष बाबूलाल और अमर बाबूलाल के मामा दो पतो नताशा बाबूलाल बदलू और ईरेश बाबूलाल मतेयो के ममुआ ससुर रिशाना का आजा अलमेरा का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू के मृत्यु अलमेरा में हो गई है। अशोक के नाम से लोग पहचानते थे। अम्स्टरडम नॉर्थ, द खोरन और बेल्जियम से आशा पंचू और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 62 साल की आयु में त्वेयंजस्तखियार औत बहन आशा पंचू का दुलारा भाई संतोष और अमर बाबूलाल के मामा नताशा बाबूलाल बदलू और ईरेश बाबूलाल मतियो के ममुआ ससुर रिशाना का आजा अलमेरा का रहने वाला श्रीमान अशोक कुमार पंचू की मृत्यु अलमेरा में हो गई है। अर्थी से आप विदाई ले सकेंगे आज रात के 8 बजे तक। एटफर सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओकमेरवेग अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया ये कल बीफे के सुबह 10:30 मोरखनोक्तंत हालफ एलफ किए जाएंगे। वेस्खार्द क्रिमाटोरियम ओकमेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्थ फ्रजोरखिंग समस्त परिवार पंचू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार सुनिए। अलमेर से जॉनी और वॉनी घेसाई दुबे और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार को 87 साल की आयु में जीफरन तख्त यार औत जॉनी और वॉनी घेसाई दुबे की माँ सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अलमेर की रहने वाली श्रीमती प्रभावती गोपाल की मृत्यु अलमेर में हो गई है। रोसा गोपाल के नाम से लोग पहचानते थे। अलमेर से जॉनी और वॉनी घेसाई दुबे और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 87 साल की आयु में जीवन तख्त यार औत जॉनी और वॉनी घेसाई दुबे की माँ सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अलमेर की रहने वाली श्रीमती प्रभावती गोपाल की मृत्यु अलमेर में हो गई है। रोसा गोपाल के नाम से लोग पहचानते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 2 बजे मोरखन दोंदर दाह त्वे उर किए जाएंगे। वैसखार्द क्रेमाटोरियम ओक मेरवैग 275 अमस्टरडम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार फ्रजोर्किंग परिवार घेसाई दुबे और परिवार गोपाल के दुख में शामिल है।

और यहीं से आप सुनेंगे शोक प्रोग्राम यादें। गीत इसमें होंगे लता जी की आवाज में, और ये गीत पेश है अम्स्टरडम नॉर्थ, द खोरन और बेल्जियम के रहने वाले बहना आशा पंचू की तरफ से अपने स्वर्गीय दुलारा भाई संतोष और अमर बाबूलाल के तरफ से अपने स्वर्गीय मामा नाताशा बाबूलाल बदलू और इरेश बाबूलाल मातेयो के तरफ से ममुआ ससुर और ईशाना के तरफ से स्वर्गीय आजा स्वर्गीय श्री अशोक कुमार पंचू की याद में 62 साल की आयु में इनकर मृत्यु बीते सोमवार को अल्मीर में हो गई है। तो इन्हीं की याद में अगला गीत प्रोग्राम में पेश है लता जी की आवाज़ में।

0: और लता जी की आवाज में गीत को आप जो सुने पेश की गई है अम्स्टरडम नॉर्थ द खोरन और बेल्जियम के रहने वाले बहना आशा पंचो के तरफ से अपने स्वर्गीय प्यारा दुलारा भैया लड़कन संतोष बाबूलाल और अमर बाबूलाल के तरफ से स्वर्गीय मामा नाताशा और एरिश के तरफ से स्वर्गीय मामूमा ससुर रिशाना के तरफ से स्वर्गीय आजा स्वर्गीय श्री अशोक कुमार पंचू की याद में 62 साल की आयु में इनकर मृत्यु बीते सोमवार को अलमेरा में हो गई है। इन्हीं की याद में गीत पेश की गई है और यहीं तक आप सुने सुख प्रोग्राम यादें उजाला रेडियो पर।
1: यू आर दिस इज डेनिस मोय फ्रॉम द ANWB। Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

मोनालिसा ये जीवन एक सर्कस है, दुनिया में जिंदगी सबको है प्यारे। कृष्ण मुखर्जी और शैलेंद्र सिंह जी की आवाजें, गौर कामपुर जी इनका लिखा हुआ नगमा दोनों ने मिलकर गाए हैं। शैलेंद्र सिंह जी और कृष्ण मुखर्जी और वो भी बप्पी लहरी के साज और संगीत पर 1977 का मूवी फिल्म हैवान से हमने नगमा को निकाले। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये फिल्म जो है राम रानू जी का डायरेक्ट किया हुआ, जिसमें भाइयों देव मुखर्जी और जॉय मुखर्जी ने काम किया है प्रेमा नारायण के साथ। नासनीन भी है राकेश रोशन, पद्मा खन्ना। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनने वालों, 2 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 7:30 ओवर द क्लॉक फन हाल ऑफ बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं। आज तीसरी बार और आखिरी बार पेश कर रहा हूं प्रोग्राम शैलेंद्र सिंह जी का। एयरलक मेरे प्यारे सुनने वालों, 91 प्रोग्राम फन शैलेंद्र सिंह जी मार्क, लेकिन प्लानिंग के मुताबिक ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। अमदातिकाल बहुलक अख्तराइट सिट ऑफ द स्कीम। अगले बैक टू द फ्यूचर जो हम बनाएंगे, पहले घंटे में उसका जिक्र मैंने थोड़ा सा किए है। हम नॉर्मली तो नहीं बताते हैं, लेकिन एक मशहूर संगीतकार का डियो का प्रोग्राम हम बनाएंगे। जिसने सुने होंगे वो जानते हैं, और जो नहीं सुना वो अनाड़ी है। मेरे प्यारे सुनो, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आप चेक कीजिएगा www.puntujala.nl। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनो वालों, दत्वीतुली बताना तो मैं भूल गया था कि आप अवश्य मुझसे स्टूडियो में डोलोपन व्हाट्सएप के जरिए बातें कर सकते हैं। और एपर्स को मालूम है, आप रतन को ऐप करेंगे ना करेंगे, ऑल टाइट अंतर तरह। चलो बढ़ते हैं शैलेंद्र सिंह जी की खूबसूरत नगमाएं जो हम आज पेश कर रहे हैं, एक और इनका खूबसूरत गीत की ओर आपको ले चलते हैं।

होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है अरे हे कांची प्यार। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी फ्रॉम द मूवी जमाने को दिखाना है 1982 नहीं खती तुम्हें तख्तख का फिल्म। शैलेंद्र सिंह जी ने गीत को गाए हैं और नगमा मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा, संगीतकार राहुल बर्मन, नाजीर हुसैन फिल्म का प्रोड्यूसर, हाजरी हुसैन फिल्म का डायरेक्टर, ऋषि कपूर पद्मिनी कोल्हापुर, कादर खान, अमजद खान, जुगीता बाली, इन सभी का एक फिल्म। कमला इट अम्स्टल फिन दंकीवेल आपके ऐप के लिए एन फैन तो हो रहा था ओक एन ऑक्टोबर मेंस बिन एक ओक आइलिन जी आयत हार्लेम दंकीवेल धन्यवाद आपके ऐप के लिए। और धन्यवाद भी हम कहेंगे मार्सब्रुक का हेयर एंड्रू और चित्रा जी को। डना शहर का मिक दंकीवेल, मिक दंकीवेल फॉर यू एप ये। अम्स्टरडम सेंट्रम का प्रभा जी को भी हम धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद दंकीवेल, शुक्रिया इफोन डॉलर जी को हम कहेंगे अडना। और इल्स रामदयाल अडन हेल्डर जो इस वक्त भी मॉरिशियस में है, वार ट्वी यूर फोर आउटिस, लेकिन इतनी दूर जाकर भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। हर एक को चाहिए उजाला, जहां भी आप जाएंगे उजाला नहीं रहेंगे तो बस अंधेरा ही अंधेरा है ना एल्स जी, दंकीवेल। कैटरीना आइट अम्स्टरडम, दंकीवेल कैटरीना आपके के लिए। नी हिलास कैटरीना ऑफ द वुंसडा हैं दोनों दाहवन दो खेम फर्सुक नंबर्स सात दाहवन दंत्राइक नंबर्स फॉर द एप्पर्स या दातु एक वेल। समझिनिया सुशीला चंद्रिका सिंह जी आइट अम्स्टल फेम दंकीवेल आपके ऐप के लिए। और हमारे प्रिय जो स्वागरी है हंस लक्ष्मण सिंह जी अहित सुतमेर भी आनंद ले रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ। मेरे प्यारे सुनोलो, आपको मालूम रहे कि कल 17 तारीख सितंबर है मोरख, तो कल रात्रि में 8 से 11 बजे 3 घंटे लगातार आपका सेवा करने चले आएंगे, यही स्टूडियो रतनाम से पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज मैं मोय रोमांटिक सॉन्ग्स। मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स और या हिल फिल मोय रोमांटिक सॉन्ग्स, लेकिन उनके साथ साथ भी कुछ दर्द भरे नगमाएं भी प्लेलिस्ट में शामिल है। और प्रोग्राम पूरा का पूरा तैयार है, लगभग 300 गाने कल के प्लेलिस्ट में है। बाप रे दादा, मोरखनाफन कल रात्रि को आप ही का मन चाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो पर लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से रात्रि में 8 बजे अख्तूर तो टेलीफ्यूर 11 बजे रात्रि तक पेश करेंगे दिल की आवाज। एंड नेचुरली सैटरडे, सैटरडे 19 सितंबर, हाँ जी शनिवार 19 तारीख सितंबर को 5 घंटे का लोकल प्रोग्राम फन ऑफ सेव योर एंड। और अगर मृत्यु समाचार रहा 7 बजे तो मृत्यु समाचार के बाद हम शुरू करेंगे प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर 7 बजे से लेकर एकदम 12 बजे रात्रि तक। और उस वक्त अगर आप ऐप करेंगे स्टूडियो में तो तमाम एपर्स के नाम हम हमेशा गीत चलाया करते हैं एंड दैट हाउ होम लाइफ डून। जो भरपूर ये हफ्ते आज मैं तो हूं, कल भी रहेंगे लेकर दिल की आवाज, और शनिवार को भी आपका सेवा हम करेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। एंड हो फॉर वे खत सिंह हम आपको शनिवार को बताएंगे। फिलहाल तो हम आपको ले चलेंगे एक
friendship song ki or dosti wala nagma Anand Bakshi ji ka likha hua jo milkar gayenge Shailendra Singh ji Dalajan Patma Shri Mohammad Rafi Sahib ji aur Nightingale Asha ji Lakshmikant Pyarelal ki saaj aur sangeet par from the movie Suhaag aur movie 1979 ka hai 1979

Beautiful दोस्ती वाला नगमा मेरे प्यारे सुनो, फ्रेंडशिप सॉन्ग सेवा में जो पेश किया गया है, ए यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। शैलेंद्र सिंह जी, द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी, आनंद बख्शी जी, इनका लिखा हुआ नगमा इन सभी ने मिलकर गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर। 1979 का फिल्म सुहाग से हमने नगमा को निकाले और ये फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों, डायरेक्टर जो है मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, रेखा, प्रवीण बाबी, अमजद खान, निरूपा रॉय, रंजीत, जीवन, कादर खान, जगदीश राज, हरकुलिस, इन सभी का एक फिल्म। प्यारे सुनो लो, इस घंटे का आखिरी गीत पेश करेंगे एंड बॉय ओ बॉय, यकीन मानिए ब्रेक के उस पार ऐसा लग रहा है कि सेव द बेस्ट फॉर द लेस, बहुत सारे खूबसूरत गाने शैलेंद्र सिंह जी का गाया हुआ पेश होने वाले हैं, तो जरूर चून कीजिएगा हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर का ये प्रोग्राम, जरूर सुनते जाइएगा। ब्रेक के बाद आखिरी हिस्सा हम सुनाएंगे, फिलहाल तो हम आपको सुनाएंगे कुली, फिल्म कुली का एक मस्ती भरी गीत, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, वंस अगेन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार, शैलेंद्र सिंह जी और शब्बीर कुमार जो मिलकर गाएंगे, और ये फिल्म कुली भी मनमोहन देसाई का डायरेक्ट किया हुआ मूवी, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, कादर खान, रति अग्निहोत्री, वहीदा रहमान, सुरेश ओबेरॉय और ओम शिव पुरी ने काम किया है। लीजिए सुनिए गीत और गीत के बाद ब्रेक है।

0: WNUR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A7 vanaf de afsluitdijk naar Groningen is dicht tussen knooppunt Heerenveen en Tijnje. Ze zijn daar bezig met het opruimen van een verloren lading slachtafval. Verkeer richting Groningen rijdt om via Leeuwarden en Drachten over de A32 en de N31. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: मुझे भी कुछ कहना है
3: मुझे कुछ कहना है
2: मुझे भी कुछ कहना है
3: पहले तुम
2: पहले तुम
3: पहले तुम
2: पहले तुम
3: पहले तुम
2: तुम
3: तुम
2: तुम
3: तुम
2: तुम
3: तुम
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए
3: अच्छा मैं कहती हूँ

मुझे कुछ कहना है। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में जो कहता है आज मुझे वो कहना है। खूबसूरत प्यार भरा गीत मेरे प्यारे सुनो वालों, हाउ रोमांटिक दिस सॉन्ग इज। शैलेंद्र सिंह जी और लता जी ने मिलकर गीत गाए हैं, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज और संगीत पर। बिग ब्लॉकबस्टर मूवी बॉबी का ये नगमा है और मूवी 1973 का है। नीतिंद्रियन सी फतख, द ग्रेट शोमैन राज कपूर ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। ऋषि कपूर को इंट्रोड्यूस किया है एज हीरो ऑपोजिट टिम्पल कपाड़िया। प्रेमनाथ प्राण साहब जी, अरुणा रानी, प्रेम चोपड़ा, फरीदा जल्लाल, दुर्गा खोटे, सोनिया सानी, मूवी फिल्म और खूबसूरत गाने सुन रहे हैं प्रोग्राम। और जुड़े हुए हैं उजाला रेडियो के साथ मेरी प्यारी बहन उषा, और उषा सुतमेर में सुन रहे हैं प्रोग्राम। थैंक यू वेल फॉर योर एपियर। आईफी जहांगीर भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं आमस्टरडम का, और हमारे प्रिय कुलेखा पारस मुरली मामा जी भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे सुनो वालों, जब एक पॉपुलर सॉन्ग शैलेंद्र सिंह जी का उनकी तीसरी प्रोग्राम जो हम सजा रहे हैं का आखिरी हिस्सा में हमने शुरुआत की है, तो चलो एक और हो जाए, क्यों, क्या ख्याल है? एक रोमांटिक सॉन्ग अमित खन्ना जी का लिखा हुआ मेरे प्यारे सुनने वालों। नट्टू लक वंस अगेन अपनी खूबसूरत आवाज में शैलेंद्र सिंह जी, और एक और खूबसूरत आवाज सुलक्षणा पंडित जी का आवाज, ये दोनों मिलकर गीत गाएंगे। अमित खन्ना जी का लिखा हुआ, बप्पी लहरी की साज और संगीत पर, और वो भी फिल्म चलते चलते का नगमा, फिल्म 1976 का है। नीहतिन सेशन सी फतख। बस आप कहीं पर हो और यूं अचानक किसी पे नजर आ गया और आपका दिल के जो घंटी है बजने लगी फट, अरे यही तो है जिसे मैं सदियों से ढूंढ रहा हूं, मेरे दिल का राजा, मेरे सपनों की रानी।

सपनों की रानी कोई मन में था जिसको बसाया, आज मुझे मिल गया है, यही है यही है यही है मेरा प्यार। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनो, व्हाट अ रोमांटिक सॉन्ग, रौंते सारे खड़े हो गए, बिल्कुल क्या खूबसूरत आवाजें हैं शैलेंद्र सिंह जी का और सुलक्षणा पंडित जी की आवाज भी कितनी खूबसूरत है। अमित खन्ना जी का लिखा हुआ ये सुपर टूपर एक्शन पैक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए बप्पी लहरी की बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक पर। चलते चलते फिल्म का नाम मेरे प्यारे सिने वालों, और ये फिल्म 1976 का है। निहतिन सेशन से इवन तक सुंदर धड़ ने जो डायरेक्ट किया है, विशाल आनंद सिमी गरवल जिन पर ये गीत भी पिक्चराइज किया गया है मूवी में, फिल्म में काम किया है तारुण घोष भी, नाजनीन जगदीश राज। मूवी फिल्म चलते चलते मेरे प्यारे सिने वालों, रोहिणी कल्लू जी ऐत स्खिदम रोतदम दंकेवल आपके ऐप के लिए शुभरात्रि एंजॉय। शैलेंद्र सिंह जी के नगमाएं जो हम चला रहे हैं हियर ऑन यू आर लाइव फनाइट स्टूडियो रोतदम, और एंथोफ से भी ऐप आए हैं मीना दंकेवल, मीना जी आप भी जुड़े हुए हैं उजाला रेडियो के साथ, एंजॉय द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ऑफ शैलेंद्र सिंह जी। मेरे प्यारे से लोग 8 मिनट बाकी है और वो भी सरे 8 बजने में, 8 मिनट फोर क्लॉक फन हालफ नहीं है। कल मोरखनाफंत दन बैने कर जैसे मैंने कहा ओक लाइफ हियर ऑफ यू आर रात्रि में 8 बजे से 11 बजे पॉपुलर प्रोग्राम दिल की आवाज पेश करने वाले हैं विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स मेरे प्यारे सुनने वालों और डर भरे नगमाएं। आज हमने प्रोग्राम को देखा है तो लगभग 300 गाने उस प्लेलिस्ट में है कल का नक्टूल खाकनी तालस कुनस पेल। अब दराया आपको सुना नहीं पाएंगे इतने सारे गाने 3 घंटे का प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी एक ऐप कोई खनुख मोड़ दैट इज रियली इनिंग व्हाट सीक्रेट्स। और आने वाले शनिवार मेरे प्यारे सुनो वालो 19 तारीख को 9 सितंबर रात्रि में 7 बजे से टिल मिडनाइट सैटरडेवन फ्रॉम 7 to 12 p.m. इन द एवेंट सैटरडे नाइट फीवर मूवी लोकल सॉन्ग्स और सभी एपर्स के नाम जो गीत भी हम चलाते हैं पेश करने वाला हूं भी लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोहतनाम से। हम बढ़ चलते हैं अगले गीत की ओर, आ मेरी जान लवली सॉन्ग शाली शैलेंद्र सिंह, सॉरी अतिश शाली शैलेंद्र जी, और ये शाली जो है महान सॉन्ग राइटर शैलेंद्र जी दी सो फिल्मो एलिजिस हिव स्क्रीव, और उनका प्रोग्राम भी हम सजाने वाले हैं यही बैक टू द फ्यूचर में हम सजा रहे हैं। एंकल के साथ अलकलार है एंकल का इक्विनिटेंस वन द डाटम इस कब उनका प्रोग्राम हम पेश कर पाएंगे। शैलेंद्र जी बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चला गया, एंड हील फिल फांसेलीचे जिनी द्वारा अफखमाट शाली जी ने उसे पूरा किया है, लेकिन शाली जी ने भी खुद अपना कुछ नगमाएं लिखे हैं और शायद ये उनमें से भी एक हो जो शैलेंद्र सिंह जी और प्रीति सागर मिलकर गीत गाएंगे बप्पी लहरी की साज और संगीत पर। निकाल रहा हूं ये खूबसूरत गीत फ्रॉम द मूवी तेरे मेरे प्यार, और ये फिल्म जो है मेरे प्यारे सुनने वालों निहति नेह नसीब तक का है। चलो हम इसे सुने ये नगमा।

मेरी जान, खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, प्रीति सागर और शैलेंद्र सिंह जी का गाया हुआ। शाली शैलेंद्र जी ने गीत को लिखा, संगीतकार बप्पी लहड़ी और फिल्म का नाम तेरे प्यार में। फिल्म नीहती नेहन सीवन तक मेरे प्यारे सुनने वालों 1979 सुभाष शर्मा जी का डायरेक्ट किया हुआ। मिथुन चक्रवर्ती सारिका विजेंद्रा का एक फिल्म विजेंद्रा गाठे। इतने सारे खूबसूरत गाने हैं और मेरे प्यारे सुनवालों, लेकिन वक्त आधे घंटे से कम भी है, क्या करूं, क्योंकि एक मिनट गुजर चुके हैं सरे 8:38 ओवर द क्लॉक फनाल ऑफ नीख 9 तक आपका साथ हम देंगे। मार निराश नहीं होना, क्योंकि हम आपको सुनाने जा रहे हैं वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग शैलेंद्र सिंह जी का, जो इन्होंने गाए हैं हेमलता जी के साथ। एंड व्हाट अ वॉइस, हम हेमलता जी की आवाज भी इतनी खूबसूरत है मैं आपको बता नहीं सकता। इनकी और भी सारे खूबसूरत गाने हैं, जब भी इनकी आवाज भी मैं सुनता हूं तो या एक रहर किप फेल्फन। रविंद्र जैन जी इनका मास्टर कॉम्पोजिशन, इन्होंने गीत को लिखा, संगीतकार भी रविंद्र जैन जी। शैलेंद्र सिंह जी और हेमलता जी, अखियों के झरोकों से, फिल्म का नाम जो है अखियों के झरोकों से, एक मूवी 1978 का है। नीहत नाख्तन से इवन तक निकाल रहा हूं ये खूबसूरत नगमा। इत्मीनान से आप सुने और एंजॉय कीजिएगा।

कई दिन से मुझे कोई सपनों में अक्सर सताता था। क्या वो तुम हो? हाँ जी, तुम हो, तुम हो, तुम हो। खूबसूरत गीत, रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, हेमलता जी और शैलेंद्र सिंह जी की खूबसूरत आवाजों में गीत गाया गया है। रविंद्र जैन जी, इनका मास्टर कंपोजिशन है, इन्होंने गीत को लिखा। संगीतकार भी रविंद्र जैन जी। अखियों के झरोकों से फिल्म का नाम, अखियों के झरोकों से फिल्म इतनी थी नाखतन सीवन तक। मेरे प्यारे सुनने वालों, हीरे नाग प्रोड्यूसर डायरेक्टर सचिन पिलगांवकर और रंजीता कौर का एक फिल्म, दिस इज यू आर। मेरे प्यारे सुनने वालों, और सरे 8:08 जो गुजर चुके हैं, हम आपको ले चलेंगे एक नगमा जो शैलेंद्र सिंह जी ने दो लेजेंड के साथ मिलकर गाए हैं। हालांकि शैलेंद्र सिंह जी भी एक लेजेंड है, क्या आवाज है, क्या आवाज है। शैलेंद्र सिंह जी का एक नगमा विद मोहम्मद रफी साहब जी और किशोर कुमार, एक पार्टी वाला गीत है और मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। 1977 नीहतिन सीवन सीवन तक का फिल्म परवरिश से हम नगमा निकालेंगे। पहले आप किशोर कुमार और रफी साहब जी का कमाल सुनेंगे और बाद में शैलेंद्र सिंह अपना एंट्री देंगे इस गीत में।

हम प्रेमी प्रेम करना जाने। शैलेंद्र सिंह जी, रफी साहब जी और किशोर कुमार ने मिलकर गीत गाए हैं। मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर। फिल्म का नाम परवरिश, मेरे प्यारे सुनवालों, और फिल्म 1977 का है। नी हंतीम सेवन सेवन तक मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया है। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, डिग्रेट शमी कपूर, नीतू सिंह, शबाना आजमी, इन सभी का एक फिल्म है। शैलेंद्र सिंह जी का तीसरा और आखिरी आज प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, मेरे प्यारे सुनवालों। एक टाइटल सॉन्ग की ओर आपको ले चलते हैं। निदा फासली जी का लिखा हुआ एक नगमा जो शैलेंद्र सिंह जी गाएंगे उषा खन्ना के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम है आदत से मजबूर, और ये जो फिल्म है 1982 का है। नीघंतीन त्वेन तख्त अंडर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर।

अंदर की बात है और मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। मेरे प्यारे सुनो, ये था खूबसूरत गीत शैलेंद्र सिंह जी का गाया हुआ, निधा फासली जी का लिखा हुआ, उषा खन्ना संगीतकार, फ्रॉम द मूवी आदत से मजबूर, अमरीश सिंगल जी का डायरेक्ट किया हुआ, जिसमें रंजीता और मिथुन ने काम किया है। मेरे प्यारे सुनो, आप आ गया, हम लेंगे आप सभी से दो नगमाएं और सुनाएंगे आपको जरूर। पहला गीत तराना, फ्रॉम द मूवी तराना, रविंद्र रवेल जी का लिखा हुआ, शैलेंद्र सिंह जी की आवाज में और राम लक्ष्मण के साज और संगीत पर। और आखिरी में एक नगमा आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, जो किशोर कुमार, रफी साहब जी, आशा जी, उषा मंगेशकर एंड नटुल जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, शैलेंद्र सिंह जी मिलकर गाएंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज और संगीत पर। एंड दैट इज सॉन्ग फ्रॉम द मूवी नसीब इतनी हटीने तख्त। उम्मीद और आशा करते हैं कि तमाम नगमाओं जो हमने पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों, भरपूर आप सभी ने पसंद की है। कल रात्रि को आप सभी से फिर हम मिलेंगे मोरखनाफन 17 सितंबर रात्रि में 8 बजे, 8 इन द आवंट टोट 11 इन द आवंट, जबकि हम पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज। एनिक बैनर सैटरडे होक इन द आवंट फ्रॉम 7 टोट मिडनाइट, लेकर लोकल प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल। बाय।

बहरो थाम लो अब दिल, मुकेश जी के साथ लता जी से गीत को आप सुने और फिल्म का नाम नमस्ते जी। उजाला रेडियो का प्रोग्राम, अब हिस्सा लेंगे मोहम्मद रफी।

शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा, इसलिए आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म राम और श्याम से आप सुने आज का उजाला रेडियो का प्रोग्राम में।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने।